के बीच में खड़ा हुआ महसूस करते हैं। आगे शेख साहब फरमाते हैं, अब ये शख्स जो तालिब इल्म है, जो लोगों को नसीहत करता है, अगर ये अल्लाह ताला की हदों के सामने ना रुके और ये हदें पार कर जाए और ऐसी बातें करें जो शरीयत के खिलाफ हो, चाहे जानते हुए अनजाने में, लेकिन बात कर दी उसने अपने इल्म के मुताबिक, ये शख्स कैसे चाहता है कि दूसरों को नसीहत करे और लोगों को क्या तालीम देना चाहता है, लोगों को क्या तकवा सिखाएगा जो खुद तकवे से दूर है। अब देखें साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तकवा देखें, इज्तिहाद भी उसके साथ है, शरीयत के उसूल भी उसके साथ हैं, लेकिन उसके तकवे ने इजाजत नहीं दी कि मैं किस तरीके से वो चीज आपसे लूं जिसको मुझे हुक्म नहीं दिया गया। आगे शेख साहब फरमाते हैं, देखें साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि उन्होंने उस मोटी और ताजी ऊंटनी को नहीं लिया जो शख्स देना चाहता था, लेकिन उसके एवज में वो दुबली पतली ऊंटनी लेना चाहता था जो उस पर फर्ज ज़कात थी। क्यों? अगरचे इज्तिहाद और नजर और अकल और सोच और समझ हर तरफ से आप देखें तो इस बात के फेवर में थी, तईद में थी कि ये मोटी ऊंटनी ले लेता क्या फर्क पड़ता, लेकिन नहीं। आगे शेख साहब फरमाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला की हिकमत है कि अपने प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उम्मत में से सबसे ज्यादा कामिल लोग और सबसे ज्यादा बेहतरीन और अफजल लोगों को अल्लाह ताला ने चुना है और अपने प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी बना दिया है, जो उम्मत में से सबसे ज्यादा मुत्तकी हैं, सबसे ज्यादा परहेजगार हैं, सबसे ज्यादा कामिल हैं हर एतबार से, इल्म है, अमल है, तकवा है, ईमान है, अमल है, जितने भी एतबारात हैं हर एतबार से पूरी उम्मत एक तरफ और सहाबी रसूल अल्लाह सल्लम एक तरफ। आगे शेख साहब फरमाते हैं, इस इल्म की मिठास उस वक्त तक कोई महसूस नहीं कर सकता जब तक कि वो यह महसूस ना करे कि वो जिम्मेदार है। यह इल्म जिम्मेदारी है मेरे भाइयों, आम बात नहीं है। इस इल्म की मिठास उस वक्त तक कोई नहीं पा सकता जब तक वो ये महसूस ना करे कि उसने जिम्मेदारी उठाई हुई है। जब कोई सवाल तुमसे पूछा जाए तो तुम ये तसव्वुर करो कि बहुत भारी चीज आपके सामने रख दी गई है, फिर ये सोचो और समझो आपने इस मामले में बे अच्छे तरीके से जानकारी की है, आप इसका जवाब जानते हैं, अगर आप इसका जवाब जानते हैं मुकम्मल तरीके से तो उसका जवाब दें बगैर किसी ज्यादती की या नुकसान के। आगे शेख साहब फरमाते हैं, हमने ऐसे तालिब इल्म को भी पाया है जब हम तालिब इल्म के लिए निकले थे घर से, कि आलिम इल्म की कुर्सी पर बैठता था दर्स देने के लिए फजर की नमाज के बाद से लेकर जोहर की अजान तक, यानी जोहर की नमाज तक, और तालिब इल्म मसाइल सुनता जो शेख बयान कर रहा है वो नोट करता, मिसाल के तौर पर कोई तहारत का मसला है उसको अच्छी तरह सुनता और छोटी छोटी चीजें शुरू में वो नोट कर लेता और फिर अच्छे तरीके से कोशिश करता सवाल करके या बहस मुबासा करके कि ये जो दो तीन मसाइल हैं इनको अच्छे तरीके से वो समझे जो शेख से उसने सुने हैं, और उस मसले के ताल्लुक से मिसालें ढूंढना, मिसालें तैयार करना, मिसाल कि अब ये मसला है कि इसकी शरीयत में कहां कहां मिसाल मिलती है, प्रैक्टिकली कौन कौन सी मिसाल है जो मेरे सामने आएगी तो मैं क्या करूंगा उस वक्त, उसको फिर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी उस वक्त अमल कैसे किया जा सकता है, फिर नंबर तीन दलील एक तो मुझे बयान कर देगी और क्या दलील है इसकी, दलील पर भी नजर डालना है। जब तक जोहर का वक्त आता तो उसके पास गौर करने जा रहा, उसके बाद एक या दो या तीन मसाइल जमा हो जाते
جب وہ گھر کو لوٹتا